0: रेडियो आधी खुला 105.4
1: समी चो 14 में बोधे लोटी पर दी रो पहले ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखाई अमरो
2: खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
3: आंगी समी जो लोटरी पर दी हूँ छापताई गुदी
2: भर दी आ भर दी लोटरी खाली पर दी बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खने बने खाई विषय खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बने वित्तीय संस्थे के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुनिए बैंक आप ही बने आरी
4: सतर्क
3: सिद्धार्थ ब्याग क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई रेडियो आदि खुला 105.4

एसएस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा।

0: सुमित नजे
1: ए समय को साथ में जितु सुनचांदी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर रेडियो आदि खोला 105.4
2: रेडियो आदि खोला 105.4

0: बस ना अहिले हाम्रो गर्नेमा 11 बजेको छ।
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

कार्यक्रम को क्रम में राखी यह छोटो व्यापारिक विश्राम संगे फिलहाल स्वागत कर कार्यक्रम का विशेष भाग्य में हमी आज बुधवार व्यवसाय में रहे सुमधुर खाल का भाका कार्यक्रम में स्थान दीद अगाड़ी बढ़ी रहालेजी कलिला भाका कौरा भाका झ्यावरी भाका ठाड़ भाका लगाय का भाका हामीसँग सन्तिनी भाकाहरूलाई कार्यक्रममा जोड्दै अगाडि बढ़िरहेका छौं। यति बेलाको क्रममा हामी पस्किन्छौं अर्को सुमधुर खालको भाका सोही भाकासँगै हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यहाँहरू भने हामीसँगै रहनुहोला।

0: सादर निमन्त्रण यस वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको 19 साधारण सभा एवं 9 अधिवेशन तथा निर्वाचन निम्न कार्यक्रम बमोजिम हुने भएकोले सम्पूर्ण साधारण सदस्य जीवहरू लगायत सम्बन्ध सबैमा सूचना एवं निमन्त्रणा पठाइसकिएको छ। कथम कदाचित सूचना एवं निमन्त्रणा प्राप्त नगरेको भएमा यसै सूचनालाई निमन्त्रणा मानि निम्न मिति समय र स्थानमा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि सादर निमन्त्रणा गर्दछौ। मिति यही असार 12 गते शुक्रबार, समय दिनको ठिक 12:30 बजे ठिक समयमा कार्यक्रम शुरू हुनेछ। स्थान वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको बहुउद्देश्य सामुदायिक सभा हल सिटी हल। कार्यक्रमहरू समुद्घाटन समारोह 12:45 बजेदेखि, दिवा खाजाको समय 20 मिनट मात्र। बन्द सत्रको कार्यक्रमहरू बन्द सत्र सकिएपछि निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रारम्भ हुनेछ। वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ वालिङ स्याङ्जा
1: समितियों चौदह के में बोधे लोटी पर दी रो बहले ने विवरण पी भी है मुई खाता दिखे हमरो
2: खाई खाई बहु कोई लोटरी बढ़ दिलो
3: आंगी समझो लोटरी पर दी हूँ छापता ही गुरी
2: बढ़ दी आप बढ़ दी लोटरी खाले पर दिन बा सहेली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बनी खाई विषय खाई मई विश्वास आनंद फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी।

0: के पासवर्ड पिन खैमै आरी सुमी बैंक आफै भने आरी
1: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेजरी जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: आधी खोला को स्पंदन रेडियो आधी खोला 105.4 MHz
1: बैंकिंग खैमत बिले चौधरी ATM मोबाइल डे इंटरनेट बैंकिंग के गोप्य विवरण आ रही खाई बिले तो माध्यम क्यारे न्यो दे प्रे छली जानकारी री विषया न्यो कॉल पर जिमो समय न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी वीरा न्यो दे प्रे विवरण री विषया बैंक दे नील पर जिमो न्यो ताने सतर्क तना ठजर क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्याले जन हितरी जारी संदेश
2: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरिलाई
3: हतार हतारमा छोराको बिहे आँटियो अरू सबै व्यवस्था मिल्यो तर अब सुनका गरगहनाको व्यवस्था गर्नु पर्ने भयो कहाँ जाने के गर्ने अल्पत्र परियो
4: तिमी अल्पत्र नपर न मैले विश्वासिलो ठाउँमा बिहेका लागि आवश्यक पर्ने सबै गरगहना बनाउन अर्डर दिइसकेको छु
3: लौ अब कहाँ दिनु